हाँ इतनी देख दें करके दोबारा। तो खैर कमर्शियल ला लीए क्योंकि ये किसी कारण लाइन कट हो गई है। दोबारा फिर आप मेरे को पिया सुदीप ढिलों का सीधा नंबर नवी ने मिलाया जोड़ा

सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुट चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत के नाल।

0: बिल्कुल।
1: नमक हरामी लोग किसे दे यार कदे ना होंदे कोल भी बंदे यार भी कहंदे पर अंदरों

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca.
3: पंजाबी लहरां प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
4: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
3: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
4: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
3: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं,
4: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
3: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
4: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
3: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
5: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

plasma में, ब्रेन में, अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज, एनी स्टेज, जी हाँ, आपके स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सीए पे चाहिए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 स्पिंडर्स का कॉल कीजिए 905-456

implanted plaza में, Brampton में, Alpha Optical, any age, any stage, जी हाँ, आपकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे चाहिए, आंखों को चेक करवाने के लिए, appointment के लिए, 905-400 meters का इंतजार कॉल कीजिए, 905-456-7733, Alpha Optical, your vision is your business.

0: सब सुबह गया गाँव सुन हो पढ़ो नित पाई और पूरा पूरा किया रहा साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत बच्चन गया
1: Brampton, telephone 905-799-9400.

मैं कृपा तारी आज हर अराधा भूमि पूरण काल हमारे हर जियो तो सुख संपत राज राम ले हो पाई मेरे को रब या गए अरदास राम जो पाओ सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा।

होती सब राखी वे सर कया जहां अन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता।

मुनि पई गुण गाए भक्त गया हर नाम से आए रहा सबरी थाई रव्या आद जुगाद जाता मन परता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाई उठे सब पाए सब टूटे पार हम

0: प्रवर्धनम् यः पठेत् कवचम् दिव्यम् शृणुयाद्वा समाहितः सर्वान् कामान् अवाप्नोति दीर्घमायुश्च वर्धनम्।
1: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले नॉट जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1150-216-213-1165।
0: श्री अंगारक कवच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद अंगारको देवता अम् बीजम् कम् शक्तिः रम् कीलकम् मम अंगारक प्रसाद।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया सा मौसम है आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे इलाके भी हो गए हैं जहाँ पे इतना कहर पड़ा है गर्मी का कि आग लगी है और बहुत लोगों में त्रासदी तकलीफ हो गई है। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये त्रासदी दूर करें, इस संसार में शांति रहे और सबकी सुरक्षा रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना को लेकर के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, लेटेस्ट बारबेक्यू, किचन की गैजेट्स और आउटडोर फर्नीचर, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, बहुत बढ़िया रेट में, बहुत बढ़िया क्वालिटी, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-799-0045-799-0045। अब आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, और इस वीकेंड में आपके लिए ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, दो दिन की एकादशी, एक वो जो व्रत रखने वाली है पहले एकादशी, तो इसमें बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते हैं तो बहुत सारी और पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप मूविंग के लिए ट्रक बुक करना है तो आज ही बुक कीजिएगा 416-524-4164-426-7704। तो आपका सामान बड़ी हफाजत से पहुंचाते हैं कि बहुत सारी टीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक कीजिए और बिल्कुल अपना बेफिक्र हो जाइए मूविंग के बारे में, क्योंकि मूव होना सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, मूव होना कोई आसान बात नहीं है। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है किचन वाटर गोल्फ में, तो मुंशी जंड को कॉल कीजिए 519-546-1207-519-546-1260 पे आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है, वो आपको सुनाते हैं। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है, बहुत बढ़िया आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट ब्रिटानिया पे मौजूद है, तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703-905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको ये एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये मोहम्मद रफी लता जी का गाया हुआ गीत है। तो फिल्म थी आपके लिए जन्म जन्म के फेरे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और गाना कमाल का है।

जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए एक और बहुत गाना बढ़िया मैंने चुना है। तो ये जो रात को तो मौसम थोड़ी ठंड हो जाती है, बहुत ही हवा ठंडी ठंडी चलती है, तो रोमांटिक सा वातावरण हो जाता है आप सभी के लिए। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और आपको बहुत बढ़िया मौसम है, तो कोशिश कर रहे हैं कि मनोरंजन भी आपका बढ़िया ऐसा हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो जरूर हमें आप मैसेज कर सकते हो 6477737640। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 से मिसिस आगा में मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-625-0055 905-625-0055। अब अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए लंदन में मौजूद है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप और जानकारियां ले सकते हो। मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा लंदन के आसपास के इलाके में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स 416-524-704। आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-709-0045 पर कॉल कीजिए 9057990045। पहले की और देरी की जाए आपके लिए बहुत बढ़िया ऐसा प्रोग्राम। आपके लिए जो भी क्राइम की रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, एक्सट्रोशन की न्यूज आ रही हैं, वो जब तक हमारा प्रोग्राम वीकेंड में आता है आप तक सभी खबरें पहुंच चुकी होती हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत आपके लिए।

0: ऊपर चांदनी आई कमल कमल दरिया ऊपर चांदनी आई कमल कमल
1: इन पहरों पर मन मेरा
0: एक बात कहता

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो इसी तरह आपका मनोरंजन रात को भी हम 10 से 11 बजे आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेकर के पेश हो जाएंगे। अब आपके लिए अगर आपने क्लीन का काम करवाना है, मास्टर क्लीन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। लंदन के आसपास के इलाके में किसी तरह का भी आपने कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा। और जानकारी के लिए मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाइए, बहुत पूरी जानकारी लीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय तकरीबन खत्म ही होने वाला है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चाटी कला तेरे पाने श्रद्धा पला, रात को आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मैं लगा रही हूँ, तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जो लोग प्रोग्राम के पसंद करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर्दी गला तेरे पाने सुबह पला है, मैं वंडरफुल डे एंड ए सेफ वन। ब्रैम्पटन में कारा सागा चल रहा है 3 दिन का, आप जरूर जाइए, बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।

24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट यहाँ पहुँचो 10970 ब्रैमली रोड वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री।

0: Corporation Karwar Gate.
1: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Montrush and Bovedda intersection. Ya visit karo www.tawakitchen.ca. 905-790-1699
2: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो फिर फेयर डील रियल्टी

करले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

भी हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी मिलेगी, और उस तो बाद वॉक इन कस्टमर नु जड़ियां एक्सक्लूसिव डील मिल रही हैं, ब्लैक फ्राइडे प्राइसेस इन जुलाई, ओदा भी फायदा चुक लोगे। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी, ऑन बोवेड पहुंचना है तुसी। ब्रैम्पटन अपलायंसिस, ए वन वर्ड है, BramptonAppliances.com साड़ी वैबसाइट है जी। 905-450-2828, 905-450-2828।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार दी शाम दी महफिल दे विच एक बार फिर तो ट्यून कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े आदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ते सारा सत्कार वेलकम टू यू नू खुशामदीद एंड स्वागतम

वेलकम बैक जी। 7:07 हो गया थोड़े नाल साडा साथ रेडियो अंदाज़ दे ज़रिए बनया होया। चलो एम 5:30 ते तुसी प्रोग्राम नूं जिथे जिथे भी सुन रहे हो थोड़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम दे नाल जुड़न लई 416-233-7378 स्टूडियोज़ दे नंबर ने 4162-33-7368। अगर तुसी अपने बिजनेस नूं रेडियो अंदाज़ दे ज़रिए प्रमोट करना चाहुंदे हो जी, प्रोग्राम नूं सपोर्ट करना चाहुंदे हो, मेरा फ़ोन नंबर है 647-234-6000 6472-34-6000 नंबर से तुसी गलबात कर सकते हो। तो जी हाँ, बड़ा खूबसूरत मौसम है, आज 31 degrees है राइट नाउ, वैसे तो 26 degrees है, बट सोहना मौसम है, गर्मी की रुत चल रही है। कल 29 है तो मंडे 33 है, तो फिर ट्यूजडे तैयार हो जी 37 degrees है, तो फिर अगले दिन हैगा 31। सो अगला जिहड़ा वीक है वह काफ़ी वट कढ़ण वाला गर्मी च वट कढ़ण वाला वीक आने वाला है, पर ये भी एक दो महीने आ, फिर असी जदों स्नो आ गई तो फिर थोड़ा थोड़ा फिर समर नूं मिस करांगे। सो एनी हाउ मौसम बड़ा खूबसूरत है, जरूर दिन भी वड्डे हैगे आ, तो जरूर अपने आप लई तुसीं टाइम जरूर कढ़ो, तो अपनी सेहत दे लई जरूर टाइम कढ़ो, अपने आप दे लई टाइम कढ़ो, क्योंकि बाकी सारे काम कार चलते रहिंदे आ। कई बार असी भूल जाने कि सानू अपने आप को टाइम चाहिए, सो जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जिद नाल थोड़ी सेहत चंगी रहे, तुसी सेहतमंद रहो, ताकि फिर तुसी अपनी जिंदगी है जी उन्होंने असी चंगी तरह बिता सकी। तो नहीं तो फिर जो कुछ दुखदा हो, कदे लत दुखी, कदे बांह दुखिया, कदे सिर दुखिया, तो फिर तो गोलियां खा के तो जिंदगी कट्टन वाली गल हो जाती है। सो अपना ख्याल रखो जी, खुश रहो, हसते रहो, तो जिंदगी हसना बड़ा जरूरी है, तो जिस दे नाल थोड़ी सेहत होर

जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्मा की, जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है, दूर थे और दूर है हरदम जमीनो आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। बात शमा और परवाने की चली है तो बेपनाह मोहब्बत परवाना बयां तो नहीं करता, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार जलकर खाक होकर कर देता है, अपने आप को फना कर देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है। ऐसा ही जिक्र है इस खूबसूरत गजल में, गुलुकार हैं गुलाम अली।

0: बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क। अजीब इश्क की दास्तां होती है। क्या किसी ने खूब कहा है, तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। सामीन, जिस तरह खुदा का राज कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, उसी तरह इश्क भी कुछ।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.